आदाब। NHK वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से खबरों के साथ वसीमा आबिद और खलील शिराजी हाजिर हैं। पेश खिदमत हैं पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 16 सितंबर रात 9 बजे और भारतीय वक्त के मुताबिक 9:30 बजे की खबरें। जापान की एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स ASDF का कहना है कि एक बगैर पायलट जासूस तैयारा ग्लोबल हाक मुमकिन तौर पर गिरकर तबाह हो गया है, क्योंकि तोत्तोरी प्रीफेक्चर में साहिल के करीब समंदर में तैरता हुआ मलबा मिला है। हो सकता है कि मलबा उसी तैयारे का हो। ASDF का तैयारे से राबता उस वक्त मुनकता हो गया जब ये मंगल की दोपहर 1 बजे के करीब प्रीफेक्चर के शुमाल में 50 किलोमीटर दूर बैन अलाक्वामी पानियों के ऊपर परवाज कर रहा था। उनका कहना था कि तैयारा उस वक्त रेडार से गायब हो गया। यह तैयारा शुमाली जापान के आओमोरी प्रीफेक्चर में मिसावा एयरबेस पर तैनात था। ASDF ने कहा कि ग्लोबल हॉक ने सुबह तकरीबन 10:20 पर इस अड्डे से उड़ान भरी थी। उनका कहना था कि यह तरबियती मिशन पर नहीं था, परवाज का मकसद जाहिर नहीं किया गया है। ग्लोबल हॉक तकरीबन 15 मीटर लंबा और 5 मीटर ऊंचा, जबकि इसके परों का फैलाव 40 मीटर है। ये तकरीबन 36 घंटे तक मुसलसल परवाज कर सकता है और हाई रेजोल्यूशन इंफ्रारेड कैमरों का इस्तेमाल करते हुए तकरीबन 20,000 मीटर की बुलंदी से निगरानी के मिशन को अंजाम दे सकता है। जापान की वजीर आजम ताकायची सनाए ने जुमेरात को काबीना में रद्दोबदल से पहले बुध की सुबह लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी की नई इंतजामी टीम का ऐलान किया है। टोक्यो में पार्टी के हेडक्वार्टर में बुध की सुबह 10 बजे शुरू होने वाले जनरल काउंसिल के एक गैर मामूली इजलास में नई क्यादत के ओहदों की बाजाब्ता मंजूरी दी गई। नायब सदर आसोतारो, सेक्रेटरी जनरल सुजुकी शुन इची, पॉलिसी रिसर्च काउंसिल के चेयरपर्सन कोबायाशी ताकायुकी और इंतखाबी हिकमत अमली कमेटी के चेयरपर्सन निशिमुरा यासुतोशी अपने ओहदों पर बरकरार रहे। पार्लिमानी उमूर के चेयरपर्सन के तौर पर खिदमत सरंजाम देने वाले काजियामा हिरोशी को जनरल काउंसिल का चेयरपर्सन मुकर्रर किया गया। साबिक डेप्यूटी चीफ काबीना सेक्रेटरी मुराई हिदेकी को पार्लिमानी उमूर कमेटी का चेयरपर्सन मुकर्रर किया गया है। एग्जीक्यूटिव कायमकाम सेक्रेटरी जनरल हागेउदा कोइची, पार्टी ऑर्गेनाइजेशन और मुहिम के हेडक्वार्टर के चेयरपर्सन मात्सुनो हिरोकाजू और शोबा ताल्लुकात आम्मा के चेयरपर्सन सुजुकी ताकाको भी अपने ओहदों पर बरकरार रहे। ताकाची ने कहा कि वो एक ऐसा फ्रेमवर्क कायम करना चाहती हैं जिसमें पार्टी और हुकूमत दोनों की ताकत से भरपूर अंदाज में इस्तेफादा करते हुए वो उन कलीदी पॉलिसी तब्दीलियों को अमली जामा पहना सकें जिनका उन्होंने अपनी इंतखाबी मुहिम में वादा किया था। जापानी हुकूमत के तर्जुमान आला ने गैर जानबदार कानून साजों के एक ग्रुप को बताया है कि हुकूमत बैन अलाक्वामी फौजदारी अदालत ICC की हिमायत करती है। ICC की सरबराह और दीगर हुक्काम पर अमरीका की जानिब से पाबंदियां लगाई गई हैं। किहारा मिनोरू ने यह तबसरा मंगल को पार्लियमान में गैर जानबदार पार्लिमानी एसोसिएशन बराए नजरसानी इंसानी हकूक सिफारतकारी के अराकीन से मुलाकात में किया। ये कानून साज हुकूमत पर जोर दे रहे हैं कि वो दरख्वास्त करे कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया ICC की जापानी सरबराह अकाने तोमोको पर से पाबंदियां फौरी तौर पर खत्म करे। ग्रुप ने मंगल को दरख्वास्तों पर मुश्तमिल एक मुरासला किहारा के हवाले किया। मुरासले में कहा गया है कि वो अमरीकी पाबंदियों की सख्त तरीन अल्फाज में मजम्मत करते हैं। इसमें जापानी हुकूमत पर जोर दिया गया है कि वो पाबंदियों के खिलाफ वाजह एहतजाज रिकॉर्ड कराए और इनकी फौरी वापसी का मुतालबा करे। ग्रुप ने वजीर आजम ताकायची सनाए से भी मुतालबा किया कि वो रवा माह अक्वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में अपनी तकरीर में ICC के लिए जापान की हिमायत का इजहार करें। किहारा ने जवाब में कहा कि हुकूमत ICC की मुस्तकिल हिमायत करती है, क्योंकि ये अदालत कानून की हुक्मरानी को यकीनी बनाती है।

0: ये खबरें एनएचके वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से नशर की जा रही हैं। अब मजीद खबरें समाप्त फरमाइए। नेपाल और चीन की सरहद पर शदीद सैलाब आने के तकरीबन 3 हफ्ते बाद इस इलाके में काम करने वाली बैन अल्कवामी गैर सरकारी तंजीमों या एनजीओस के नुमाइंदों ने मुतासर आबादियों के लिए तवील मुद्दती मदद का मुतालबा किया है। नुकसानात की वसत का जायजा लेने और मकामी जरूरियात के सर्वे में मसरूफ अमल एक जापानी ग्रुप ने पीर के रोज ऑनलाइन ब्रीफिंग मुनाकिद की। जापान प्लेटफॉर्म के हिगुची हीरो आकी ने दिखाया कि आफत में पुल बह जाने के बाद किस तरह रस्सी और दीगर जराए से इमदादी सामान की तरसील की जा रही है। उन्होंने कहा, सबसे बड़ी चीज ये है कि सड़कें कट चुकी हैं जिससे इमदाद पहुंचाना मुश्किल हो गया है। इसके बाद इमदादी सरगर्मियों के लिए सड़कों तक रसाई की बहाली बुनियादी शर्त बन चुकी है। एक और जापानी एनजीओ के एहलकार ने मुस्तकबिल के लाहे अमल के बारे में ऐसे लोगों से अपनी बातचीत बयान की जिन्होंने अपने अहले खाना को खो दिया है। शांति रजाकार एसोसिएशन की मोहतरमा हागीहारा हिरोको ने कहा, जब तक लोग ये तसव्वुर नहीं कर सकेंगे कि उनका मुस्तकबिल कैसा होगा, उनके लिए आगे बढ़ना मुश्किल है। इस लिहाज से जरिया माश की बहाली जरूरी होगी। जापानी हुकूमत ने पहली बार बैरून मुल्क मुकीम जिनमें जापानी शहरी भी शामिल हैं की मलकियत में मौजूद जमीनों और इमारतों के आदादोशुमार जारी किए हैं। मंगल को जारी किए गए सर्वे के नतायज जाहिर करते हैं कि मुल्क में रजिस्टर्ड अराजी का तकरीबन 0.06% बैरून मुल्क मुकीम अफराद और कारपोरेशनों की मलकियत है। 27.2% के साथ जमीन की मलकियत में सबसे ज्यादा हिस्सा अमरीका का है। इसके बाद चीन का 22.5% और ताइवान का 7.7% है। सर्वे यह भी जाहिर करता है कि जापान में रजिस्टर्ड इमारतों में से तकरीबन 0.2% बैरून मुल्क मुकीम रहायशियों और कंपनियों की मलकियत है। चीन इमारतों की मलकियत में 44.2% के साथ सर फहरिस्त है। इसके बाद 18.6% के साथ ताइवान और 11.3% के साथ अमरीका का नंबर आता है। जापानी हुकूमत ने ऐसी जमीन और इमारत मालिकान की शनाख्त के लिए रजिस्ट्रेशन की मालूमात को भी देखा जिनके बारे में ख्याल किया जाता है कि वो गैर मुल्की शहरी और कंपनियां हैं। नतायज से पता चलता है कि रजिस्टर्ड अराजी का 0.46% और रजिस्टर्ड इमारतों का 1.07% उनकी मलकियत है। हुकूमत इन नतायज को गैर मुल्की शहरियों से मुतल्लिक मुस्तकबिल की पॉलिसियां बनाने के लिए बतौर हवाला इस्तेमाल करने का इरादा रखती है।
1: और अब आखिर में आज की अहम खबरों पर एक नजर। जापान की एयर सेल डिफेंस फोर्स ASDF का कहना है कि एक बगैर पायलट जासूस तैयारा ग्लोबल हॉक मुमकिन तौर पर गिरकर तबाह हो गया है क्योंकि तोतोरी प्रीफेक्चर में साहिल के करीब समंदर में तैरता हुआ मलबा मिला है। हो सकता है कि मलबा इसी तैयारे का हो। और जापान की वजीर आजम ताकायची सनाई ने जुमेरात को काबीना में रद्दोबदल से पहले बुध की सुबह लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी की नई इंतजामी टीम का ऐलान किया है। इसके साथ ही NHK वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से खबरें खत्म हुई। मजीद खबरों, तबसरों और तज्जियों के लिए आप जब चाहें विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट nhk.jp/urdu।

ये एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11,655 किलोहर्ट्ज पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है यूटीसी अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

टोक्यो से एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समय अनुसार 16 सितंबर बुधवार रात 11:30 बजे शांग्रीला चैन और वायला खवानों से सुने समाचार। जापान के वायु आत्मरक्षा बल ASDF का कहना है कि तुत्तोरी प्रिफेक्चर के तट से दूर समुद्र में तैरता हुआ मलबा मिलने के बाद आशंका है कि मानव रहित टोही विमान ग्लोबल हॉक दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। यह मलबा संभवतः उसी विमान का है। मंगलवार को दोपहर करीब 1 बजे प्रिफेक्चर से लगभग 50 किलोमीटर उत्तर में अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र के ऊपर उड़ रहे विमान से ASDF का संपर्क टूट गया था। उन्होंने बताया कि उस समय विमान रडार से गायब हो गया था। विमान उत्तरी जापान के आओमोरी प्रिफेक्चर में मिसावा एयरबेस में तैनात था। ASDF ने बताया कि ग्लोबल हॉक सुबह करीब 10:20 पर बेस से रवाना हुआ था। उन्होंने कहा कि यह प्रशिक्षण मिशन पर नहीं था, उड़ान का उद्देश्य अभी तक उजागर नहीं किया गया है। ग्लोबल हॉक करीब 15 मीटर लंबा, 5 मीटर ऊंचा है और इसके पंखों का फैलाव 40 मीटर है। यह लगभग 36 घंटे तक लगातार उड़ान भर सकता है और उच्च रेजोल्यूशन इंफ्रारेड कैमरों का उपयोग करके लगभग 20,000 मीटर की ऊंचाई से निगरानी मिशन को अंजाम दे सकता है। जापान की प्रधानमंत्री ताकाइची सनाई ने बुधवार सुबह लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के नए कार्यकारी अधिकारियों की घोषणा की। यह कदम बृहस्पतिवार को होने वाले मंत्रिमंडल फेरबदल से पहले उठाया गया है। टोक्यो में पार्टी मुख्यालय में बुधवार सुबह 10 बजे जनरल काउंसिल की विशेष बैठक में नए अधिकारियों की आधिकारिक घोषणा की गई। उपाध्यक्ष आसोतारो, महासचिव सुजुकी शुनइची, नीति अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष कोबायाशी ताकायुकी और चुनाव रणनीति समिति के अध्यक्ष निशिमुरा यासुतोशी के पद बरकरार रहे। संसदीय मामलों की समिति के अध्यक्ष काजियामा हिरोशी को अब जनरल काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। पूर्व मुख्य कैबिनेट उपसचिव मोराई हिदेकी को संसदीय मामलों की समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। कार्यकारी कार्यवाहक महासचिव हागीउदा कोइची, पार्टी संगठन और चुनाव अभियान मुख्यालय के अध्यक्ष मात्सुनो हिरोकाजू और जनसंपर्क मुख्यालय की अध्यक्ष सुजुकी ताकाको के पदों में कोई फेरबदल नहीं हुआ है। ताकाइची ने कहा है कि उनका लक्ष्य एक ऐसा ढांचा स्थापित करना है जो पार्टी और सरकार दोनों की ताकत का पूरी तरह से लाभ उठा सके, ताकि उन प्रमुख नीतिगत बदलावों को हासिल किया जा सके जिनका उन्होंने अपने चुनाव अभियान में वादा किया था। जापान सरकार के शीर्ष प्रवक्ता किहारा मिनोरू ने सर्वदलीय सांसदों के एक समूह को बताया है कि सरकार अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC का समर्थन करती है। ICC के अध्यक्ष और अन्य अधिकारियों पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगाए हैं। किहारा मिनोरू ने मंगलवार को संसद में मानवाधिकार कूटनीति पर पुनर्विचार हेतु सर्वदलीय संसदीय संगठन के सदस्यों से मुलाकात में यह टिप्पणी की। सांसद सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि वह अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन से ICC अध्यक्ष आकाने तोमोको पर लगे प्रतिबंधों को शीघ्रता से हटाने का अनुरोध करे। आकाने जापानी नागरिक हैं। समूह ने मंगलवार को किहारा को एक मांग पत्र सौंपा। पत्र में कहा गया है कि समूह अमेरिकी प्रतिबंधों की कड़ी निंदा करता है। इसमें जापान सरकार से प्रतिबंधों के खिलाफ स्पष्ट विरोध दर्ज कराने और उन्हें तत्काल वापस लेने की मांग करने का आग्रह किया गया है। समूह ने प्रधानमंत्री ताकाइची सनाई से भी आह्वान किया है कि वे इस महीने के अंत में संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने भाषण में ICC के लिए जापान के समर्थन की बात कहें। किहारा ने जवाब में कहा कि सरकार ICC का लगातार समर्थन करती है क्योंकि यह कानून के शासन को सुनिश्चित करता है।

0: ये समाचार एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं। नेपाल चीन सीमा पर आई भीषण बाढ़ के लगभग 3 सप्ताह बाद इस क्षेत्र में कार्यरत अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने प्रभावित समुदायों के लिए दीर्घकालिक सहायता की मांग की है। नेपाल में नुकसान का आकलन और स्थानीय जरूरतों का सर्वेक्षण कर रहे एक जापानी समूह ने सोमवार को ऑनलाइन बैठक की। जापान प्लेटफॉर्म के हिगुची हिरोआकी ने दिखाया कि कैसे आपदा में पुल बह जाने के बाद रस्सी और अन्य साधनों से राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। उन्होंने कहा, सड़कें पूरी तरह से नष्ट हो गई हैं, जिससे सहायता पहुंचाना मुश्किल हो गया है, इसलिए सड़कों से आवाजाही बहाल करना राहत कार्यों के लिए आवश्यक है। एक अन्य जापानी गैर सरकारी संगठन के अधिकारी ने अपने परिजन खो देने वाले लोगों से बात करने के बारे में बताया और उनसे पूछा कि वे आगे क्या करेंगे। शांति स्वयंसेवी संगठन की हागी हारा हिरोको ने कहा, जब लोग अपने भविष्य की कल्पना नहीं कर पाते तो उनके लिए आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है, ऐसे में आजीविका बहाल करना अत्यंत आवश्यक होगा। जापान सरकार ने पहली बार विदेशी निवासियों सहित विदेशों में रह रहे जापानी नागरिकों के स्वामित्व वाली भूमि और इमारतों से संबंधित आंकड़े सार्वजनिक किए हैं। मंगलवार को जारी सर्वेक्षण के परिणामों से पता चलता है कि देश में पंजीकृत भूमि का लगभग 0.06% का स्वामित्व विदेशी निवासियों और निगमों के पास है। भूमि स्वामित्व में 27.2% के साथ सबसे बड़ा हिस्सा अमेरिका का है, उसके बाद चीन का 22.5% और ताइवान का 7.7% हिस्सा है। सर्वेक्षण से ये भी पता चलता है कि जापान में पंजीकृत भवनों में से लगभग 0.2% का स्वामित्व विदेशी निवासियों और कंपनियों के पास है। भवनों के स्वामित्व में 44.2% के साथ चीन की सबसे बड़ी हिस्सेदारी है। ताइवान 18.6% के साथ दूसरे स्थान पर है और अमेरिका 11.3% के साथ तीसरे स्थान पर है। जापान सरकार ने पंजीकरण संबंधी जानकारी की भी जांच की ताकि उन भूमि और भवन मालिकों की पहचान की जा सके जो विदेशी नागरिक या कंपनी हो सकते हैं। जांच से पता चलता है कि उनके पास पंजीकृत भूमि का 0.46% और पंजीकृत भवनों का 1.07% है। सरकार विदेशी नागरिकों से संबंधित भावी नीतियों के लिए इन निष्कर्षों को संदर्भ के रूप में उपयोग करने की योजना बना रही है।
1: इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। जापान के वायु आत्मरक्षा बल ASDF का कहना है कि तुत्तोरी प्रीफेक्चर के तट से दूर समुद्र में तैरता हुआ मलबा मिलने के बाद आशंका है कि मानव रहित टोही विमान ग्लोबल हॉक दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। यह मलबा संभवतः उसी विमान का है। और इसी के साथ NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से यह समाचार बुलेटिन अब समाप्त हुआ।